जप मन राम नाम सुखदाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपर पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख गुरु।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चल्ली, सतगुर

सुख दुख ही तय अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर भरम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जो

जायाव पवित हेतु गुर शब्द तरंगाव हर जस नाम पदार्थ मंगाव हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सुबाया जिन जप

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत।

पूर्क मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया। गुर शब्द ही

नवनज नाम वस्या कट अंतर छोड़िया माया काला हाहे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक ते आयन

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएंदा। काया विच तोटा काया विच लाहा,

है आन दिन गुण रवह दिन राती, आन दिन गुण रवह दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरह से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा। उड है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

है। मान प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

आदमाध अंत प्रवरवया कृष्ण बुझी परमंगनां गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बख्शंद गुर जप जा।

नाम सोलह कला संपूर्ण फलया, सोलह कला संपूर्ण फलया, अंत कला हुए ठाकुर चढ़या।

अगन मह जिन्हें उबारिया रतत गर्म मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच।

सच शाह अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोलै भन्नण करण समर्थ है।

की आंखें कछु ना सूझे, बूढ़ मुए बिन पानी, चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम दिष्टा।

बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तर तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

बात खोई, बहले पेख पवह दिन राती, हों मैं रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेव है।

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा मह मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया हाथ खड़

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहा। आन दिन भगत कर है दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच

68 सुरसरी। हम मूर्ख को हर कृपा करी, जन नानक तारे ओ तारण हरी। पैरों महला चौथा। सोकृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जमजाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

ध्यानी पांच मृग बेधे शिव की बानी संत संग ले चढ़ो शिकार मृग पकड़े बिन कोर हथियार रहाओ।

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भवजल।

0: जवान
1: निकट बुझ है सो बुरा क्यों करे, बिख संचय नित डरता फिरे, है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यों पावे त्यों करहे निबेरा, द्वितीया नासत एक रहे।

आओ। तप्त बुझी पूर्ण सवे आसा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जहाँ कौ प्रगट पहे गोपाल, ताँ कै दर्शन सदा निहाल।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरहो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रहे।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तनसाव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइयै। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइयै। जन्म पदार्थ

तेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी घर आया। बसंत महला पंजवां हिंडोल।

कुबजा उधरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

निस्बासुर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

आद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जपना।

सहज धुन उपजै मन साचै निबलाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो।

हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरह जन

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाउ। जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले।

ज्ञानी हर बोलह दिन रात, तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत, ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है

कान हर बरस सगल जग छाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी,

मान तन अर्प धरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहाओ। ब्रह्म नाम गुण शाख तरोवर, नित चुन चुन पूज करी जय। आत्म देओ देओ है आत्म, रस लागे पूज करी जय। विवेक बुद्ध सब

महंस बला नित उठ उठ जूझ मिरकरी जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करहो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन सवाल अत बिखे।

जपियो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने हीयर हर धारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन भज राम नाम।

सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निध बस है जिस सदा कर। पर त्रै रावण जाहे से ताला जी है नित प्रत हिर है पर दर्ब शिदर कत ढाकी है।

मनोरथ कोई ना पूरयो चाले ऊठ निरास। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कत है न

जिंद बहुटी मरण वर लै जासी परनाए आपन हथी जोल कै कै गल लगे तहाए वाल हुन की फुरसलात

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जान श्री पतनाथ

रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग। उद्दम कर लागे बहु भांति, उद्दम कर लागे बहु भांति, विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ, भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूख मुंदे बंद है बहु जटुआ, बिन हर भजन।

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजस।

चराए जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने ओ, जप

श्रवण ता पर सकियाथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै, सकियाथ सो हीयो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पित, सकियाथ सो सिर जाल पपणै, जो सिर निवै गुर अमर नित, ते नर दुख नहि भुख, ते नर निधन नहों कहिय है।

मन मज्जन पोब जिन हो सेवा करिया तिन पहो निवार अनपह पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अपार भरे सतगुर मत गूढ़।

अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमतना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगहन अगन देखत गात चरण कवल जास। गुर अमर गुरु

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो।

खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो विमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।